इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत सीधा सरल है, जिसके पास कोई भारी सामान नहीं है, वह बिल्कुल हल्का है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने सोने चांदी के भारी गहने पहन रखे हैं और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भारी भारी सामान की पेटियां भी अपने साथ लाद रखी हैं। अब अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ जाता है और नाव डगमगाने लगती है। आप बताइए, उस तूफान में किसके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से जो हल्का है, वह आसानी से तैर कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसने भारी बोझ लाद रखा है, वह उस बोझ के वजन से पानी की गहराई तक डूब जाएगा। हम सब भी आज इसी जीवन रूपी नदी में अहंकार और झूठी शान का ऐसा ही एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी वजन को उतार फेंकने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हम इस संसार सागर में डूबने से बच सकें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कबीर केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कुड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली। रे साधो, भारी पड़सी काली। श्रोताओं, कबीर साहब हमें जीवन की परम कला सिखाते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम कहीं, तू संसार के सारे प्रपंचों और व्यर्थ के विवादों को छोड़कर एक नाम अर्थात राम का नाम सुमिरन कर, उस भीतरी परमात्मा से नाता, शुद्ध गरीबी छाली और अपने शुद्ध गरीबी यानी सहज सरलता, निरहंकारिता और निष्कपट भाव को छाली यानी धारण कर लें। यहाँ गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, बल्कि मन का भोलापन और विनम्रता है, जहाँ कोई चालाकी और अहंकार नहीं होता। कबीर इसके विपरीत चलने वालों को चेतावनी देते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी। यह जो तुम संसार की कूड़ यानी झूठी और नकली बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा का चोगा पहनकर घूम रहे हो, यह तुम्हें एक दिन बुरी तरह ले डूबेगी। भारी पड़सी काली, और जब काली यानी मृत्यु का समय आएगा, काल का थपेड़ा लगेगा, तब इस झूठे बड़प्पन का वजन तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ेगा कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि जन्म मरण के इसी चक्रव्यूह में डूब जाओगे। यह दोहा अकिंचन भाव यानी पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाने की साधना का दिग्दर्शन करता है। अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा संसार में कुछ होने का भ्रम है, चाहे वह धन का अहंकार हो, जाति का हो या ज्ञान का हो। कबीर इस झूठे बड़प्पन को कूड़ यानी असत्य कहते हैं। जब मनुष्य इस असत्य को ओढ़ लेता है, तो उसकी चेतना बहुत भारी और संकीर्ण हो जाती है। इसके विपरीत शुद्ध गरीबी आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है, जहाँ जीव स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तभी राम नाम का रस भीतर ठहर पाता है। कबीर समझा रहे हैं कि काल के थपेड़े केवल उसी को डुबा सकते हैं जिसके भीतर अहंकार का वजन है। जो पहले से ही हल्का है और विसर्जित है, वह इस भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम अपने कंधों पर किस बड़प्पन का बोझ लेकर घूम रहे हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो झूठे मुखौटे लगाते हैं, क्या वे हमारे भीतरी सुकून को नष्ट नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, काल की कसौटी पर केवल वही टिक पाएगा जो भीतर से बिल्कुल हल्का और साफ है। आज कोशिश कीजिए इस कुड़बड़ाई यानी झूठी प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ने की। सीधे बनिए, सरल बनिए और अपने भीतर उस शुद्ध गरीबी यानी विनम्रता के भाव को जगाइए। अपनी चेतना को उस राम के सुमिरन में लीन कर दीजिए जो आपको संसार के सारे बंधनों से आजाद करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: 13 ज्ञान विज्ञान भौतिकता में अटका पड़ा है। बाह्य आवरण का लुभावना रूप मौज मजा मस्ती को बढ़ावा देने वाला तू उद्दंड मुक्त उछलता रहा वैश्विक स्तर पर, आनंद उपभोगता मौज मस्ती करता भोगवाद में। तूने ऐसा भी कहा है, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा सत्य है। वैसे तो तूने यह भी कहा है, पारलौकिक जीवन होता है। तेरे भौतिक जीवन को धर्म ने लांछित किया और कर्म कांड की ओर मोड़ दिया। तूने पारलौकिक जीवन की स्तुति की, लौकिक जीवन का सुख भोगने हेतु लौकिक जीवन को तूने ओछा एवं असंयमी बनाया। तब संस्कार पूर्ति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ी। विज्ञान और विवेक के संयोजन से संस्कृति की ओर यात्रा का तूने मन बना लिया। यह बुनियादी अन्वेषण है। लगता तो आसान पर है बड़ा कठिन। उस खोज की ओर जाते समय बुद्धि प्रामाण्यवाद की भी सांस फूल जाती है और मिलता ही नहीं सटीक सूत्र चिरंतन सुख समृद्धि का। पूरे संसार में आवश्यकता महसूस होने लगती है शाश्वत प्रकाश पुंज की। धुंधले से किरण की जिनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो अंधेरे में गिर जाने का भय, तब भ्रम रहित प्रकाश को स्पर्श करने की भूमिका और अभिलाषा कुतूहलवश निर्माण होती है। कठोर तर्क अनुमान के गर्त में रहते भ्रमित अनगिनत लोग अंधेरी गुफा में प्रकाश होने की कल्पना के भास में बाहर नहीं आ सकते। ऐसी दुरावस्था में फिर अटक जाते हैं अंधश्रद्धा कर्मकांड की अंधेरी गुफा में। सड़ जाते हैं मनुष्य के अनंत समूह और अनेक पीढ़ियां शोषित होते रहते हैं अज्ञान से। निष्क्रिय हो जाते हैं ज्ञान के अभाव में। इसी कारण निर्माण नहीं होता मानवीयता का सृजन। प्रकाशमान संस्कार से निःसृत हो संस्कृति, उसे न हो बाधा विषमता और भेदाभेद की। मानवता का आदर्श रूप संस्कृति के परिधि से ऐसा प्रस्तुत हो कि संस्कार का तेजपुंज सूर्य सदृश हो और आचरण के स्पर्श से धरती के अनगिनत मानव संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का संक्रमण होता रहे। आनंदोत्सव मनाया जाए चारों ओर, दिग दिशाओं में मिट जाए अनाचार अनीति दुष्कर्म पाप कलंक। ऐसा प्रकाश खोजना है, ऐसा प्रकाश परखना है, ऐसा प्रकाश देखना है, ऐसे प्रकाश की अनुभूति चखनी है, ऐसा प्रकाश जीवन के अंतरंग में प्रकुलेट करना है, उस प्रकाश को पुनः नव नवीन कोम अंकुरित होंगे गति के, प्रगति के। तो चलिए ऐसे ज्ञान प्रकाश की तलाश में।
3: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
4: गीताई अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन म्हणाला, बुद्धि कर्मा हुनी थोर मानिसी तू जनार्दना, मग कर्मात का घोर घालिसी मज केशवा। मिश्र बोलो निबुद्धि सजनु मोहात टाकिसी, जाने मी श्रेय पावेन सांगते एक निश्चित। श्री भगवान म्हणाले, दुहेरी ह्या जगी निष्ठा पूर्वी मी बोलिलो असे, ज्ञानाने सांख्य जी पावे योगी कर्म करुणिया, न कर्मारंभ टाळू निलाभे नैष्कर्म्यते कधी, संन्यासाच्या क्रियेनेची कोणी सिद्धी न मेळवी, कर्मावी न कधी कोणी नरा हे क्षणमात्रही, प्रकृतीच्या गुणी सारे बांधिले करितातची, इंद्रिये करिती कर्म मूढ त्यास चिरोधुनी, राहतो भोग चिंतुनी तो मिथ्याचार बोलिला, जो इंद्रिये मनानेती नेमुनी त्यास राबवी, कर्मयोगात निस्संग तो विशेष चिमानिला, नेमिले तू करी कर्म करणे हे चिथोरकी, तुझी शरीर यात्रा ही कर्मावी न घडेचिना, यज्ञार्थ कर्म सोडुनी लोक हा बांधिला असे, यज्ञार्थ आचरी कर्म अर्जुना मुक्त संगतु, पूर्वी प्रजे सवे ब्रह्मा यज्ञ निर्मुनी बोलिला, पावा उत्कर्ष यज्ञाने हा तुम्हा कामधेनुची, रक्षा देवास यज्ञाने तुम्हा रक्षोत देवते, एकमेकांस रक्षूनी पावा कल्याण सर्वही, यज्ञतुष्ट तुम्हा देव भोग देतील वांछित, त्यांचे त्यास न देता जो खायतो एक चोरची, यज्ञात उरले खाती संतते दोष जाळिती, रांधिती आपुल्यासाठी पापी ते पाप भक्षिती, अन्नापासुनिही भूते पर्जन्यातूनि अन्नते, यज्ञे पर्जन्यतो होय यज्ञ कर्मा मुळे घडे, प्रकृतीपासूनि कर्म ब्रह्मी प्रकृती राहिली, ऐसे व्यापकते ब्रह्म यज्ञात भरले सदा, प्रेरिले हे असे चक्र ह्या लोकी जो न चालवी, इंद्रिया सक्त तो पापी व्यर्थ जीवन घालवी, परी आत्म्यात जो खेळे आत्मा भोगो नितृप्त जो, आत्म्या मधेच संतुष्ट त्याचे कर्तव्य संपले, केल्याने वा न केल्याने त्यास भावार्थ सारखा, कोणामध्ये कुठे त्याचा न काही लोभ गुंतला, म्हणून नित्य निस्संग करी कर्तव्य कर्म तू, निस्संग करिता कर्म कैवल्य पद पावतो, कर्मद्वाराचि सिद्धी सपावले जनकादिक, करी तू कर्म लक्षूनि लोक संग्रह धर्म ही, जे जे आचरितो श्रेष्ठ ते तेची दुसरे जन, तो मान्य करितो जे जे लोक चाल वितात ते, करावे मिळवावे से नसे काही जरी मज, तिन्ही लोकी तरी पार्था कर्मी मी वागतो चिकी, मीची कर्मी न वागे न जरी आळस झाडुनी, सर्वथा लोक घेतील माझे वर्तन ते मग, सोडी न मी जरी कर्म नष्ट होतील लोक हे, होईन शंकर द्वारा मीची घातास कारण गुंतूनी करिती अज्ञ ज्ञात्याने मोकळे पने करावे कर्म तैसेची इच्छुनी लोकसंग्रह कोणत्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये नेण त्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये गोडी कर्मात लावावी समत्वे आचरुणीति कर्मे होतात ही सारी प्रकृतीच्या गुणांमुळे अहंकार बळे मूढ करता मी हे चिघे तसे गुण हे आणि ही कर्मे ह्याहुनि वेगळाची मी जाणे तत्वज्ञ गुंते ना गुणात गुणवागता गुंतले गुणकर्मी जे भुलले प्रकृती गुणे त्या अल्प जाणणारांस सर्वज्ञे चाळवू नये मज अध्यात्म वृत्तीने सर्व कर्मे समर्पुणी फलाशा ममता सर्व सोडोनी झुंजतु सुखे माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती श्रद्धेने नेण तेही तोडिती कर्मबंधने परी मत्सर बुद्धीने जे हे शासन मोडिती ज्ञानशून्यचिते मूढ पावले नाश जानतु ज्ञानी ही वागतो त्याच्या स्वभावास धरुणिया स्वभाव वशही भूते बलात्कार निरर्थक इंद्रियी सेविता अर्थ राग द्वेष उभे तिथे वश होऊ नये त्यास ते मार्गातील चोरची उनाही आपुला धर्म परधर्माहुनी बरा स्वधर्मात भला मृत्यू परधर्म भयंकर अर्जुन म्हणाला मनुष्य करितो पाप कोणाच्या प्रेरणेमुळे आपुली नसता इच्छा वेठी सधरला जसा श्री

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के

दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जनमन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजी भाषा के दबाव में नहीं आए। साहित्य जगत में उनका प्रवेश कविताओं के माध्यम से हुआ था। उन दिनों बांग्ला भाषा में गद्य और उपन्यास लेखन का चलन बहुत कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की। मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास आनंद मठ प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वंदे मातरम जैसे आजादी का बीज मंत्र बन चुका था। और आज भी वंदे मातरम को न केवल हमारा राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा, खहकहों का खजाना, जलापन म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग.
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला. महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में, सब्जी वाले का उड़ गया होश. नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: चखावे।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत सीधा सरल है, जिसके पास कोई भारी सामान नहीं है, वह बिल्कुल हल्का है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने सोने चांदी के भारी गहने पहन रखे हैं और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भारी भारी सामान की पेटियां भी अपने साथ लाद रखी हैं। अब अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ जाता है और नाव डगमगाने लगती है। आप बताइए, उस तूफान में किसके बचने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? निश्चित रूप से जो हल्का है, वह आसानी से तैर कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसने भारी बोझ लाद रखा है, वह उस बोझ के वजन से पानी की गहराई तक डूब जाएगा। हम सब भी आज इसी जीवन रूपी नदी में अहंकार और झूठी शान का ऐसा ही एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी वजन को उतार फेंकने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हम इस संसार सागर में डूबने से बच सकें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कबीर केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली। रे साधो, भारी पड़सी काली। श्रोताओं, कबीर साहब हमें जीवन की परम कला सिखाते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम कही, तू संसार के सारे प्रपंचों और व्यर्थ के विवादों को छोड़कर एक नाम अर्थात राम का नाम सुमिरन कर, उस भीतरी परमात्मा से नाता, शुद्ध गरीबी झाली और अपने शुद्ध गरीबी यानी सहज सरलता, निरहंकारिता और निष्कपट भाव को झाली यानी धारण कर ले। यहाँ गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, बल्कि मन का भोलापन और विनम्रता है, जहाँ कोई चालाकी और अहंकार नहीं होता। कबीर इसके विपरीत चलने वालों को चेतावनी देते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी। यह जो तुम संसार की कूड़ यानी झूठी और नकली बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा का चोगा पहनकर घूम रहे हो, यह तुम्हें एक दिन बुरी तरह ले डूबेगी। भारी पड़सी काली, और जब काली यानी मृत्यु का समय आएगा, काल का थपेड़ा लगेगा, तब इस झूठे बड़प्पन का वजन तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ेगा कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि जन्म मरण के इसी चक्रव्यूह में डूब जाओगे। यह दोहा अकिंचन भाव यानी पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाने की साधना का दिग्दर्शन करता है। अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा संसार में कुछ होने का भ्रम है, चाहे वह धन का अहंकार हो, जाति का हो या ज्ञान का हो। कबीर इस झूठे बड़प्पन को कूड़ यानी असत्य कहते हैं। जब मनुष्य इस असत्य को ओढ़ लेता है, तो उसकी चेतना बहुत भारी और संकीर्ण हो जाती है। इसके विपरीत शुद्ध गरीबी आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है, जहाँ जीव स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तभी राम नाम का रस भीतर ठहर पाता है। कबीर समझा रहे हैं कि काल के थपेड़े केवल उसी को डुबा सकते हैं जिसके भीतर अहंकार का वजन है। जो पहले से ही हल्का है और विसर्जित है, वह इस भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम अपने कंधों पर किस बड़प्पन का बोझ लेकर घूम रहे हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो झूठे मुखौटे लगाते हैं, क्या वे हमारे भीतरी सुकून को नष्ट नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, काल की कसौटी पर केवल वही टिक पाएगा जो भीतर से बिल्कुल हल्का और साफ है। आज कोशिश कीजिए इस कुड़बड़ाई यानी झूठी प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ने की। सीधे बनिए, सरल बनिए और अपने भीतर उस शुद्ध गरीबी यानी विनम्रता के भाव को जगाइए। अपनी चेतना को उस राम के सुमिरन में लीन कर दीजिए जो आपको संसार के सारे बंधनों से आजाद करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
0: श्रोते हो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: 13 ज्ञान विज्ञान भौतिकता में अटका पड़ा है, बाह्य आवरण का लुभावना रूप, मौज मजा मस्ती को बढ़ावा देने वाला। तू उद्दंड मुक्त उछलता रहा वैश्विक स्तर पर, आनंद उपभोगता मौज मस्ती करता भोगवाद में। तूने ऐसा भी कहा है, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा सत्य है। वैसे तो तूने यह भी कहा है, पारलौकिक जीवन होता है। तेरे भौतिक जीवन को धर्म ने लांछित किया और कर्म कांड की ओर मोड़ दिया। तूने पारलौकिक जीवन की स्तुति की, लौकिक जीवन का सुख भोगने हेतु लौकिक जीवन को तूने ओछा एवं असंयमी बनाया। तब संस्कार पूर्ति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ी। विज्ञान और विवेक के संयोजन से संस्कृति की ओर यात्रा का तूने मन बना लिया। यह बुनियादी अन्वेषण है, लगता तो आसान पर है बड़ा कठिन। उस खोज की ओर जाते समय बुद्धि प्रामाण्यवाद की भी सांस फूल जाती है और मिलता ही नहीं सटीक सूत्र चिरंतन सुख समृद्धि का। पूरे संसार में आवश्यकता महसूस होने लगती है शाश्वत प्रकाश पुंज की, धुंधले से किरण की, जिनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो अंधेरे में गिर जाने का भय, तब भ्रम रहित प्रकाश को स्पर्श करने की भूमिका और अभिलाषा कुतूहलवश निर्माण होती है। कठोर तर्क अनुमान के गर्त में रहते भ्रमित अनगिनत लोग अंधेरी गुफा में प्रकाश होने की कल्पना के भास में बाहर नहीं आ सकते। ऐसी दुरावस्था में फिर अटक जाते हैं अंधश्रद्धा कर्मकांड की अंधेरी गुफा में, सड़ जाते हैं मनुष्य के अनंत समूह और अनेक पीढ़ियां, शोषित होते रहते हैं अज्ञान से, निष्क्रिय हो जाते हैं ज्ञान के अभाव में। इसी कारण निर्माण नहीं होता मानवीयता का सृजन। प्रकाशमान संस्कार से निःसृत हो संस्कृति, उसे न हो बाधा विषमता और भेदाभेद की। मानवता का आदर्श रूप संस्कृति के परिधि से ऐसा प्रस्तुत हो कि संस्कार का तेजपुंज सूर्य सदृश हो और आचरण के स्पर्श से धरती के अनगिनत मानव संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का संक्रमण होता रहे। आनंदोत्सव मनाया जाए चारों ओर, दिग दिशाओं में मिट जाए अनाचार अनीति दुष्कर्म पाप कलंक। ऐसा प्रकाश खोजना है, ऐसा प्रकाश परखना है, ऐसा प्रकाश देखना है, ऐसे प्रकाश की अनुभूति चखनी है, ऐसा प्रकाश जीवन के अंतरंग में प्रकुलेट करना है, उस प्रकाश को पुनः नव नवीन कोम अंकुरित होंगे गति के, प्रगति के। तो चलिए ऐसे ज्ञान प्रकाश की तलाश में।
3: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
4: गीताई अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन म्हणाला, बुद्धि कर्मा हुनी थोर मानिसी तू जनार्दना, मग कर्मात का घोर घालिसी मज केशवा। मिश्र बोलो निबुद्धि सजनु मोहात टाकिसी, जाने मी श्रेय पावेन सांगते एक निश्चित। श्री भगवान म्हणाले, दुहेरी ह्या जगी निष्ठा पूर्वी मी बोलिलो असे, ज्ञानाने सांख्य जी पावे योगी कर्म करुणिया, न कर्मारंभ टाळू निलाभे नैष्कर्म्यते कधी, संन्यासाच्या क्रियेनेची कोणी सिद्धी न मेळवी, कर्माविन कधी कोणी नरा हे क्षणमात्रही, प्रकृतीच्या गुणी सारे बांधिले करितातची, इंद्रिये करिती कर्म मूढ त्यास चिरोधुनी, राहतो भोग चिंतुनी तो मिथ्याचार बोलिला, जो इंद्रिये मनाने ती नेमुनी त्यास राबवी, कर्मयोगात निस्संग तो विशेष चिमानिला, नेमिले तू करी कर्म करणे हे चिथोरकी, तुझी शरीर यात्रा ही कर्मावी न घडेचिना, यज्ञार्थ कर्म सोडुनी लोक हा बांधिला असे, यज्ञार्थ आचरी कर्म अर्जुना मुक्त संगतु, पूर्वी प्रजे सवे ब्रह्मा यज्ञ निर्मोनी बोलिला, पावा उत्कर्ष यज्ञाने हा तुम्हा कामधेनुची, रक्षा देवास यज्ञाने तुम्हा रक्षोत देवते, एकमेकांस रक्षूनी पावा कल्याण सर्वही, यज्ञ तुष्ट तुम्हा देव भोग देतील वांछित, त्यांचे त्यास न देता जो खायतो एक चोरची, यज्ञात उरले खाती संतते दोष जाळिती, रांधिती आपुल्यासाठी पापी ते पाप भक्षिती, अन्नापासुनिही भूते पर्जन्यातूनि अन्नते, यज्ञे पर्जन्यतो होय यज्ञ कर्मा मुळे घडे, प्रकृतीपासूनि कर्म ब्रह्मी प्रकृती राहिली, ऐसे व्यापकते ब्रह्म यज्ञात भरले सदा, प्रेरिले हे असे चक्र ह्या लोकी जो न चालवी, इंद्रिया सक्त तो पापी व्यर्थ जीवन घालवी, परी आत्म्यात जो खेळे आत्मा भोगो नितृप्त जो, आत्म्यामधेच संतुष्ट त्याचे कर्तव्य संपले, केल्याने वा न केल्याने त्यास भावार्थ सारखा, कोणामध्ये कुठे त्याचा न काही लोभ गुंतला, म्हणून नित्य निस्संग करी कर्तव्य कर्म तू, निस्संग करिता कर्म कैबल्य पद पावतो, कर्मद्वाराचि सिद्धी सपावले जनकादिक, करी तू कर्म लक्षूनी लोक संग्रह धर्म ही, जे जे आचरितो श्रेष्ठ ते तेची दुसरे जन, तो मान्य करितो जे जे लोक चाल वितात ते, करावे मिळवावे से नसे काही जरी मज, तिन्ही लोकी तरी पार्था कर्मी मी वागतो चिकी, मीची कर्मी न वागे न जरी आळस झाडुनी, सर्वथा लोक घेतील माझे वर्तनते मग, सोडी न मी जरी कर्म नष्ट होतील लोक हे, होईन शंकर द्वारा मीची घातास कारण गुंतूनी करीती अज्ञ ज्ञात्याने मोकळेपणे करावे कर्म तैसेची इच्छूनी लोकसंग्रह कोणत्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये नेण त्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये गोडी कर्मात लावावी समत्वे आचरूनिती कर्मे होतात ही सारी प्रकृतीच्या गुणांमुळे अहंकार बळे मूढ करता मी हे चिघे तसे गुण हे आणि ही कर्मे ह्याहुनी वेगळाची मी जाणे तत्वज्ञ गुंते ना गुणात गुणवागता गुंतले गुणकर्मी जे भुलले प्रकृती गुणे त्या अल्प जाणणारांस सर्वज्ञे चाळवू नये मज अध्यात्म वृत्तीने सर्व कर्मे समर्पुणी फलाशा ममता सर्व सोडूनी झुंजतु सुखे माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती श्रद्धेने नेण तेही तोडिती कर्मबंधने परी मत्सर बुद्धीने जे हे शासन मोडिती ज्ञानशून्यचिते मूढ पावले नाश जानतु ज्ञानी ही वागतो त्याच्या स्वभावास धरुणिया स्वभाव वश ही भूते बलात्कार निरर्थक इंद्रियी सेविता अर्थ राग द्वेष उभे तिथे वश होऊ नये त्यास ते मार्गातील चोरची उनाही आपुला धर्म परधर्माहुनी बरा स्वधर्मात भला मृत्यू परधर्म भयंकर अर्जुन म्हणाला मनुष्य करितो पाप कोणाच्या प्रेरणेमुळे आपुली नसता इच्छा वेठी सधरला जसा श्री भगवान म्हणाले

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे, बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जन मन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था, और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी

देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजी भाषा के दबाव में नहीं आए। साहित्य जगत में उनका प्रवेश कविताओं के माध्यम से हुआ था। उन दिनों बांग्ला भाषा में गद्य और उपन्यास लेखन का चलन बहुत कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास आनंद मठ प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वंदे मातरम जैसे आजादी का बीज मंत्र बन चुका था। और आज भी वंदे मातरम को न केवल हमारा राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: हो हसी का हंगामा कहकहों का खजाना ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग.
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला. महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में सब्जी वाले का उड़ गया होश. नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.